चांद सितारों से पूछा, दैट्स अ सॉन्ग बाय शशि कपूर एंड उदित नारायण ऑन लंच ब्रेक ऑन लोटस एफएम. ऑलराइट, सो वी आर 5 मिनट्स डिलेड, बट हियर वी आर नेवरदलेस विद आवर क्रंच गेम वेयर वी टेस्ट योर जनरल नॉलेज. एंड टुडे इट्स टेक्नोलॉजी. ओह, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. इन मोबाइल डिवाइस टेक्नोलॉजी, व्हाट डज द टर्म SOC स्टैंड फॉर? ऑप्शन 1, सिस्टम ऑपरेशंस कूलिंग. Option 2, system on a chip. Option 3, storage on computer. In mobile device technology, what does the term SOC stand for? And your options are 1, system operations cooling. Option 2, system on a chip. And option 3, storage on computer. You may choose one from there now and let us know which one you think is correct on WhatsApp 071-613-7803. May play via voice note or text message.

अब उन ट्रेजेडी किंग अताउल्लाह खान साहब की आवाज थी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा यू नो एंड उधर उनके हाथों में मेहंदी लगेगी. ए सेम कॉन्सेप्ट दैट अली खान सैंग हिज गजल. वी हैव द खान फैमिली लिसनिंग थ्रू टू अस दिस इवनिंग, वन ऑफ ए मैन दैट रियली नोज उर्दू वेरी वेल. और मेरा इशारा है हमारे डॉक्टर इब्राहिम खान साहब की तरफ, ए मैन दैट हैज सर्वड द बज़्मे अदब एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिजर्व्ड, एंड आई एम प्राउड टू से हीज अ वेरी वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ माइन. डॉक्टर खान साहब, इब्राहिम खान साहब invites every one of you and his family as well, invites everyone you to the annual Milad al-Nabi, Gyari Sharif, and Isali

0: दिल में ना हो गहरी सी तड़प तो मोहब्बत
1: वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे. एंड दैट वाज चरण जी, उनकी मखसूस अंदाज में इस गजल को पेश कर रहे थे. एंड नाउ लेट्स लिसन टू अनदर गजल, बट बिफोर दैट लेट्स पे सम रेंट एंड गेट बैक.
2: Hi South Africa, I'm Michael Owen. If you appreciate world-class sport and a great occasion, the Hollywood Bets Durban July is the place to be. The theme for 2026 is Country Allure, which sees the rustic style of the countryside meet the cosmopolitan cool of the city. On Saturday the 4th of July, it all comes together at Hollywood Bets Greyville, Africa's greatest horse racing and social event. I'll see you there.
1: वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुलाए, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे. वो दिल कहाँ से लाऊं, वे डू आई ब्रिंग दैट हार्ट एंड कम फ्रॉम, तेरी याद जो भुला दे, दैट कैन मेक मी फॉरगेट यू, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे. दोज इट एवर इन माई मेमरी, शो मी द वे, शो मी द रोड दैट आई कैन फॉरगेट यू. वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुलाए, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे.

दिल अगर टूट जाए किसी का कोई आवाज सुनता नहीं है. यस, इफ समबडीज हार्ट ब्रेक्स नोबडी लिसन्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द हार्ट. थैंक यू डिकी मैगराज ऑफ क्लिफडेल. आई नो योर एंटायर फैमिली इज ट्यून्ड इन दे लिसनिंग. एंड निटा, यस थैंक यू निटा. एंड यू से दैट द कलाम एटलीस्ट द गजल वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. यस एंड शुक्रिया Zakira for sharing that information regarding the film actress that is Asha Parekh in the film Bharosa, when the song Wo Dil Kahan Se Lau was of course first sung. And thank you so much again to Tarana as well and to everyone else that is tuned in. Rawat Soni will be on talk at 7 immediately after the 7 PM news. Definitely tune in to him as well. And now everybody's favorite, a man that's really taking the airwaves, and that is Kabul Bukhari.

सांग गीत हमारी जरा देखिए काबुल भिखारी इज बिकमिंग अ हाउसहोल्ड नेम ऑन लोटस एफएम एंड थैंक यू सो मच वहीदा एडम ऑफ चैट्सवर्थ यस थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स द लवर्स ऑफ काबुल भिखारी एंड वन ऑफ देम इज जाकिरा एज वेल एंड यासिरा यस यासिरा एज वेल एंड Every one of you, thank you guys so much for tuning in. जहाँ तक मेरा सवाल है जिंदगी ने अगर हमसे वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी Join me on Sunday evening at 9 PM for Qawwali Hour. उस वक्त तक जिंदगी को संभाल के रखना जिंदगी मौत की अमानत है फी अमानिल्लाह खुदा हाफिज एंड आई विल बी प्लेइंग आउट द गजल बाय चंदन दास एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू रिवाज सोनी